सुजनो चोपन्नवनारदभक्तिसूत्र गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्धमानं अविच्छिन्नं सूक्ष्मतरं अनुभवरूपं या संदर्भातला अधिक विवरण असं

0: कृष्णन अय्यर एम ए के इतने सारे नाम।
1: तूने क्यों मुझे बचाया?
0: बस अपना फर्ज निभाया।
1: क्या तू कुछ भी कर जाता?
0: कर जाती।
1: कर जाती नहीं, कर जाता बोलो।
0: अच्छा अच्छा, कर जाता।
1: मेरे लिए मर जाता?
0: हाँ मर जाता।
1: ओह माय गॉड।

कुछ वक्त नहीं गुजरा, नानी ने बताया था, सरसब्ज ढलानों पर बस्ती थी गडरियों की और भेड़ों के रेवड़ थे।

चुपचाप अंधेरे में अक्सर उस जंगल से एक भेड़िया आता था। एक भेड़ उठाकर वो ले जाता था रेवड़ से, और सुबह को जंगल में बस खाल पड़ी मिलती है।

फिर सारे गडरियों ने उस भेड़िए को ढूंढा और मार के लौटाए। उस रात एक जश्न हुआ और सुबह को जंगल में दो और बिल्ली खा लें।

0: दास बन के ये बंदा रहेगा, राज घर पर तेरा ही चलेगा। मुझसे अच्छा भला मिल जाए तो जा, चली जा चली जा।
1: आखिर ये तो चली,
0: जरा रुक जा।

0: तेरा।
1: इन गरीबों का हक आप इनको देते क्यों नहीं पिताजी?
2: इन भिखारियों के सामने मैं अपना सर झुका दूं? तुम ये कहना चाहती हो?
1: मगर वो सच्चे हैं पिताजी।
2: हुकूमत मालती, अगर वो सच्चे हैं तो हम झूठे हैं क्या?
1: सारी दुनिया यही कहती है, मेरा दिल भी यही कहता है।
2: मालती,
1: अगर ऐसा नहीं है तो अपनी झूठी इज्जत को बचाने के लिए आपने मंजू को दुनिया की आंखों से कहाँ छुपा दिया? वो मेरी बहन है, क्या ये झूठ है? वो आपकी बेटी है, क्या ये झूठ है?
2: मालती,
1: इन गरीबों की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। ये सच्चे हम झूठे हैं, ये सच्चे हम झूठे हैं।
2: खबरदार, दूसरा जबान चलाई
1: पिताजी।

पानी परियां मुस्कुराए, देखो वो गोरी गोरी राय हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है फिजाए, जापानी परियां मुस्कुराए।

0: नबीला शशि सा शर्मीला और मनोसा भोला भाला शमनी सा रंगीला शौक हो वो राजिंदर जैसा और सुनील सा बांका जिसमें इतने गुण हो सकेरी जोड़ उसी से टांका ना बंगला ना मोटर मांगू ना कपड़ा ना गहना ऐसा शौहर मिल जाए तो किस्मत का क्या कहना।
1: कमर हेलन की आंखें पद्मनी की गाल विन्नी के अदा आशा की शोखी साधना की बाल सिन्नी के नूतन का कद शर्मीला की अंगड़ाई बबीता की जवानी और नंदा की सी रहनाई वहीदा का तबस्सुम और लीना की सी मस्ती अदा में नाद में नखरे में हेमा मालिनी जैसी नजर जिसका नजारा देखकर सरशार हो जाए अगर बीवी मिले ऐसी तो बेड़ा पार हो जाए।

करना कि हाँ और सुनो हाँ एक परी थी क्या एक परी थी तोता परी हंसी वो बड़ी थी गगन देश था उसका अजब भेष था उसका चले रात आगे सुनो बात आगे सुनो तो अरे सुनो तो हाँ

ये तो अरे अरे अरे ये तो फिर सो गई। अब क्या करूं, अब क्या करूं? कोई है, कोई है, कोई है? अरे हाँ, जाग गई तुम, हैं? जाग गई। और सुनो, और सुनाता हूँ। हाँ।